गुलाब बदल सांगो चलो लुलु गुलाब सवारा नहीं गई के बंग जासर गई आगी बगा चिंदा बना बाहर यक बावर की बावर मामून बस सवारा मुझे कोई यों नो कोई ना पिंटर कावे कावे तो वार कोई बात तो सब नहीं गई आयो कोई मलाकू गुलन पनाई